0: ओए केटा,
1: अब तो साल भी नहीं ना।
0: कति दिन लाग्छ आज?
2: आज गएर देउराली बस्ने हो। अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्न त अझ दुई दिन लाग्छ साथी।
0: हो र?

0: Extreme Energy Drink.
1: National City Hospital.
2: अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन र प्रविधि सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेशनल सिटी हस्पिटल।
3: विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवाहरू,
2: वरिष्ठ युरोलोजी एवं जनरल सर्जरी डाक्टर निर्मल लामिछाने र डाक्टर योगेन्द्र देवकोटा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति विधान र डाक्टर संगीता पौडेल,
3: पेट कलेजो तथा आम्रा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वरुण श्रेष्ठ, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप कर्मचार्य,
2: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीपमान वैद्य र डाक्टर योगेश राज पन्त,
3: महिलामा हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिनुमा श्रेष्ठ र डाक्टर मन्जु पाण्डे,
2: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रौनियार,
3: फिजिसियन डाक्टर गौरीराम महतो,
2: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सेनाई,
3: हार्ट जोर्नी नसा तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील अधिकारी,
2: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर दामोदर तिवारी र डाक्टर किशोर उप्रेती,
3: हेमाटोलोजिस्ट डाक्टर शंकर बस्ताकोटी,
2: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट डाक्टर प्रदेश घिमिरे, मेक्सिलो फेसियल सर्जन डाक्टर गणेश चौधरी, इन्टरभेन्सनल पेन फिजिसियन डाक्टर विकास कुमार श्रेष्ठ
3: लगायत अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सम्पूर्ण उपचार नेशनल सिटी हस्पिटलमा। नेशनल सिटी हस्पिटल, हस्पिटल रोड, भरतपुर, सम्पर्क 0054 93 611।
2: तपाईँको स्वस्थ जीवन सेवाका लागि प्रतीक्षामा नेशनल सिटी हस्पिटल।
4: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बन्दीपुर 88.8 मेगाहर्ज।

0: अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो बन्दीपुर 88.8 मेगाहर्ज।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
3: हा 200 वाट।

0: Extreme energy drink.
1: National City Hospital.
2: अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन र प्रविधि सहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेशनल सिटी हस्पिटल।
3: विशेषज्ञ चिकित्सक र सेवाहरू,
4: वरिष्ठ युरोलोजी एवं जनरल सर्जरी डाक्टर निर्मल लामिछाने र डाक्टर योगेन्द्र देवकोटा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्योति विधान र डाक्टर संगीता पौडेल,
3: पेट कलेजो तथा आन्द्रा रोग विशेषज्ञ डाक्टर वरुण श्रेष्ठ, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर निर्मला लक्ष्मी श्रेष्ठ, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिलीप कर्मचार्य,
4: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीपमान वैद्य र डाक्टर योगेश राज पन्त,
3: महिलामा हुने क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिनुमा श्रेष्ठ र डाक्टर मन्जु पाण्डे,
4: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रौनियार,
3: फिजिसियन डाक्टर गौरी राम महतो,
4: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सबिना सेनाई,
3: हार्ट जोर्नी नसा तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुशील अधिकारी,
4: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर दामोदर तिवारी र डाक्टर किशोर उप्रेती,
3: हिमाटोलोजिस्ट डाक्टर शंकर बस्ताकोटी,
4: इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिस्ट डाक्टर प्रदेश घिमिरे, मेक्सिलो फेसियल सर्जन डाक्टर गणेश चौधरी, इन्टरभेन्सनल पेन फिजिसियन डाक्टर विकास कुमार श्रेष्ठ
3: लगायत अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सम्पूर्ण उपचार नेशनल सिटी हस्पिटलमा। नेशनल सिटी हस्पिटल, हस्पिटल रोड भरतपुर, सम्पर्क 0654996611।
2: तपाईँको स्वस्थ जीवन सेवाका लागि प्रतीक्षामा नेशनल सिटी हस्पिटल।
5: नेशनल इलेक्ट्रोनिक्स, तपाईँको भरोसाको नाम, विगत 40 वर्ष